समझी कम्प्यूटर काठमंड को मूल्य थप सुविधा सहित दुई वर्ष समय वारेटी भाग कंप्यूटर तथा लैपटप पाइने बेट्री कंप्यूटर्स फोन 0067 4123 गोरखा।

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-20-670 मोबाइल नम्बर 98460